0: तुम सब कौन से स्कूल के हो?
1: हम बंदरगाह स्कूल का है।
0: शैतान, तुम बंदर के स्कूल का है?
1: हाँ।
0: तो तेरी दुम का है?
1: दुम, गुम।
2: दुम, गुम, गुम, दुम, गुम, दुम, दुम।